0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद

0: में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दी 6:05 हो रहे ने। आओ हुन सुनदे आ ज्ञान अमृत।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

मानस गान प्रोग्राम च तुसी सर्वन कर रहे सी रामचरित मानस की लड़ीवार पाठ की 135वीं कड़ी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। परिचय।

आओ हुन तुहानू परिचय तहत जानकारी दी दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम आदि सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर, 8:40 ते तुसी पंजाबी फिल्मी गीता दा प्रोग्राम सुनोगे महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते तुसी शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना सुनोगे। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार निशा होरा पासू शास्त्रीय गायन राग अहीर भैरव सुनोगे। इस उन्हां नाल तबले ते संगत करनगे गुणवीर सिंह ते हारमोनीयम ते उन्हां दा साथ देणगे अजय सिंह। 9:30 तुसी सुनोगे गजला। 10:02 ते समा रहेगा जी साडे टेलीफोन बेस्ड प्रोग्राम हालू फरमाइश दा। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकदे हो। दिल्ली तुसी नंबर डायल करना है 0181 23 42 173। तमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम 11:05 ते पेश कीता जावेगा। 12:05 ते समा रहेगा प्रोग्राम वस्ते वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी मेरी कलम तो कहानी सुनोगे ते कहानीकार होंगे डॉक्टर नरेंद्र कांग। फौजी वीरानी प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे जी प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम च अज तुसी हरी सिंह गिल ते साथियां दे गीत सुनोगे। साड़ी दूजी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम साढ़े चार बजे असी तुहानू ले चलांगे गुरु नगरी अमृतसर, जिथे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30 ते इस ते अज मेरी खेती ते किसान उद्यमीपन ते स्वर विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी ते जानकारी देंगे हरप्रीत सिंह। शाम 7:40 ते समाचार समीक्षा सुनाई जावेगी। शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे पंजाबी वार्ता ते इस विषय होवेगा माँ बोली दा महत्व ते वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुदर्शन घेसो। रात 8:00 तुसी साडा इवनिंग शो सुनोगे जिंदगी हसीन है। रात 8:15 भगवान जगतनाथ रथ यात्रा ते आधारित कर्टन रीजर सुनाया जाएगा। रात 9:00 तुसी सुनोगे News@9। 9:15 तुसी सुनोगे स्पॉटलाइट ते रात 9:30

में रहेगा चर्चा का विषय प्रोग्राम था। उसके बाद रात 10:02 ते तुसी सुनोगे तुहाडा मन पसंदीदा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। सो ऐसी जी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वीरवा हुण तो बस कुछ ही पलों च तुसी साडी दिल्ली केंद्र चो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् संकटावधौ शोणितपुरजनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6 पराजितम्। अक्षर पटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दियां मुख खबरां। भारत पछमी एशिया विच वापर रहियां घटनावां ते नेड़ियो नज़र रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतकार दे उप मिशन मुखी नू तलब कीता आते व्यापारक समुद्री जहाज़ा उपर हमलियां ते सख्त विरोध दर्ज करवाया है। आमदन कर विभाग ने वित्तीय साल 2026-27 विच हुण तक 7,73,000 करोड़ रुपए तो वध दा सिद्धा टैक्स एकत्र कीता है, जो पिछले साल दी इसे म्याद दे मुकाबले 16% तो वध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कई वड्डे सुधारां दा ऐलान कीता है। क्या खादा दी ढोआ ढोआई हुण रवायती बंद मालगड्डियां दी बजाए विशेष तौर ते डिजाइन कीते कंटेनर राही होवेगी। भारत अते बरतानिया दरमियान व्यापक आर्थिक अते व्यापार समझौता अज तों लागू होवेगा। चोन कमीशन ने हरियाणा विच वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR नूं होर 10 दिनां लई वधा दित्ता है। राष्ट्रीय महिला कमीशन दे चेयरपर्सन विजय राहतकार अज मोगा अते बल्कि 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शामिल होणगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त करदिआं ढा दित्ता है। सूबे विच 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर विच 2 मामलियां च 5 तस्करां नूं एक AK-47 राइफल असले अते 30 किलोग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब लई 80 करोड़ रुपए राखवे रखे। सूबे भर विच 650 गुरु रविदास जी बगीचियां स्थापित कीतियां जाणगियां अते 6.5 लाख बूटे लाए जाणगे। भारत ने एक रोजा क्रिकेट मैचों की लड़ी के पहले मैच में इंग्लैंड नूं 6 विकटां नाल हरा दिता है। ऐ सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 7:03 हो रहे ने। प्रोग्राम सोनी सवेर नूं, बस थोड़ा जा इंतजार होर।

0: बिल्कुल जी, कर हर मैदान फतेह, बहुत सोहणा सुनेहा इस गीत च। असी सारयां ने जो है वो सुनिया इस गीत च, जो सुनेहा दिता गया सी। ते जिवें कि तुसी सब जानते हो कि प्रोग्राम सूनी सवेर च हर रोज़ किसी ना किसी खास दिन बारे असी गल करदे हाँ, उस तरह अज का दिन जो जी 15 जुलाई यानी कि अज का दिन दुनिया भर विच वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस वजो मनाया जाता है। इस दिन की जड़ी शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने साल 2014 विच कीती सी। ते इसका मकसद नौजवानों नू हुनरमंद बनाउन, रुजगार के नवे मौके प्रदान करन ते उड़ा नू आत्म निर्भर बनाने लिए प्रेरित करना है। आज दे समय च सिर्फ तुसी सब जानते हो कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, स्किल्स बहुत जरूरी हैं, चाहे कंप्यूटर होवे, डिजिटल टेक्नोलॉजी होवे, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, लीडरशिप होवे या फिर कोई होर तकनीकी हुनर होवे, यह सब नौजवानों नू अपनी करियर विच अग्गे वधन लई मजबूत बनाते हैं। तो तुसी जानते हो कि जिहड़े साडे सियाणे अक्सर यह गल कहिंदे सी कि जिहड़ा साडी डिग्री है वह साडा एक तरह ना गेट पास है, पर जिहड़े साडा स्किल्स ने, जदों असीं स्किल्स लैंदे हां वह साडा हुनर है, वह तां उम्र साडे नाल रहिंदा है। तो दुनिया भर च जेकर असीं गल करिए ते सब तो जिहड़े दुनिया दे सब तो नौजवान देशों विचों साडा भारत एक है, इसलिए जे साडे नौजवानों कोल सही सिक्ख्या दे नाल नाल वधिया हुनर भी होण तां उह ना सिर्फ अपना भविख रोशन कर सकते ने सगों देश की तरक्की विच एक वड्डा योगदान भी पा सकते ने। ते जेकर असीं गल करिए साडे देश विच नौजवानों नू स्किल्ड करन लई सरकार दीआं योजनावां की ने, देश विच माहौल की है, ते पंजाब विच किद्दां दी जिहड़ी कोशिशां ने वो कीतियां जा रहियां ने, इस बारे आओ जानकारी लैंदे आ सुरिंदर सिंह जी तो, जो कि पंजाब हुनर विकास मिशन अमृतसर तो ताल्लुक रखते ने। आओ उन्हां तो जानकारी लैंदे आ।
1: स्किल डेवलपमेंट जिहड़ी है एक नैशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है जिहड़ी वो 2 सितंबर 2014 दे विच जिहड़ी वो लागू हुई सी, तां उस तो बाद हर एक स्टेट दे विच एक मिशन स्टार्ट किया गया, सेम एज इट इज़ पंजाब दे विच भी स्टार्ट किया गया, जिहदा कि नाम है पंजाब हुनर विकास मिशन, जिहदे विच सरकार वल्लों अलग अलग स्कीम्स अलग अलग कैटेगरी लई अलग अलग एज वर्ग दे लई चलाईयां जा रही हैं, जिहड़ी कि अनएम्पलॉयड यूथ दे लई बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल, और इहदा मेन जिहड़ा उद्देश है, जिहड़ा इहदा मेन मोटिव है, वह है कि जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है उन्हां कोल जिहड़ी लेबर की कमी है, एक तो उन्हां नूं स्किल करके वो लेबर की कमी पूरी की जा सके, जिहड़े साडी यूथ है जिहड़ी कि इस वेले अनएम्पलॉयड है या जिहड़े पढ़ाई छड़ चुके ने या किसी फाइनैंशियल कंडीशन करके नहीं पढ़ पा रहे, तां उन्हां दा एक लाइवलीहुड सैट करना ताकि उन्हां नूं कुछ सिखा के और उन्हां दा करियर बनाया जा सके, और वो सरकार दीआं स्कीम्स नूं चलाने दे लई सरकार वल्लों एक अंपैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनर जिहड़े आ वो लगाए जाते हैं, जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की ट्रेनिंग देंगे ने। हुण जिवें मैं गल कर लवां तां शहर वाले जिहड़े यूथ है जां शहर वाले कैंडीडेट्स ने उन्हां लई सरकार ने एक जिहड़ी स्कीम चलाई हुई है उहदा नाम है जी NULM नैशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिहदे विच कि सिर्फ शहर के वासियों 18 तों 35 साल के कैंडीडेट्स नूं ट्रेनिंग दिती जाती है, रोजाना 4 घंटे का जिहड़ा समा है वह जिहड़ा उन्हां नूं डेली ट्रेन किया जाता है, और 3 तों 6 महीने का कोर्स जिहड़ा करवा के उन्हां नूं बाद चों जॉब लई पूरी हैल्प की जाती। उस तरह जे मैं हुण पिंडां दे लई गल कर लवां तो पिंडां दे लई भी जिहड़ी बहुत अच्छी स्कीम जिहड़ी सरकार वल्लों जिहड़ी ट्रेनिंग्स है उहदे अंदर चल रही ने, उहदा नाम है DDU GKY दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जिहड़ी कि पिंडां दी रूरल जिहड़े कि यूथ है वह भी सेम एज कैटेगरी 18 तों 35 साल के कैंडीडेट्स कोई भी ये एनरोल कर सकता है, अगर कोई कैटेगरी के आता है एससी कैटेगरी है वूमन है हैंडीकैप्ड है तो उन्होंने 5 साल की होर जी रिलैक्सेशन जी रखेगी। इस तरह एक होर स्कीम्स है जिड़ी कि पिंडा शहर दोनों के कैंडीडेट्स नू रजिस्टर कर सकते हैं, उसका नाम है जी PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिदे अंदर आप दोनों यूथ जी उन्होंने रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तों इलावा जिहड़ी पंजाब हुनर विकास मिशन दे नाल

बिल्कुल जी, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तो क्यों ना फिर असी हर किसी दे नाल जिहड़ा है उह सोहणा व्यवहार करिए ते हर किसी नूं खुश होके मिलिए, तां जो साडी जिहड़ी खुशी है उह दूजिआं तक वी पहुँचे, ते सानूं जदों असी किसी कोल जाइए ते लोग खुश हो जाण, ते जदों उत्थों वापस आइए ते लोकां नूं लगे कि हाँ खुशी वंडन आया सी। तो इसे एहसास नू असी हमेशा अपने नाल रखना है। ते हुण गल करदे आ मौसम बारे कि IMD वल्लों की जानकारी दित्ती गई है, मौसम विज्ञान केंद्र की कहिंदा है कि अज मौसम किवें दा रहेगा पंजाब चंडीगढ़ च, ते नाल दे नाल आने वाले दिनों दे विच की जानकारी IMD वल्लों दित्ती गई है कि पंजाब च जेकर असी गल करिए बीते दिनी जिहड़ी बारिश हुई उहदे नाल किते ना किते तापमान च गिरावट जरूर दर्ज कीती गई है, पर हाले पंजाब चंडीगढ़ च जिहड़ी मानसून च मानसून ते ब्रेक लगदी हुई नज़र आ रही है जी। हाँ, IMD वल्लों कहा गया है कि हाले जिहड़ा पंजाब चंडीगढ़ च बारिश दे किसी भी तरह की कोई संभावना तो नहीं है। उमस जिहड़ी है वह लोगों एक बार फिर तो झेलनी पवेगी, उमस भरी जिहड़ी गर्मी है वह सामना करना पवेगा। तो नाल दे नाल जेकर असी गल करिए चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र वालों, अज हल्की बिल्कुल हल्की कहा गया है कि जेकर होई भी बूंदाबांदी तो फिरोजपुर फाजिलका फरीदकोट मोगा बठिंडा बरनाला ये कुछ इलाके ने इत्थे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, संभावना जताई गई है। पर हाले 19 जुलाई अगों कहा गया है कि IMD वालों कि 19 जुलाई तो बाद जिहड़ी चंगी बारिश है वो होवेगी, ते हाले थोड़ा अज क्योंकि 15 जुलाई है हाले कुछ दिन सानू सारिया नू उमस भरी गर्मी का सामना करना पवेगा, ते आपां उहदे लई किवें तैयार रहना है की वो टिप्स रहणगियां प्रोग्राम सोहणी सवेर शो दे बारे भी तुहानू जानकारी देवांगे। पर फिलहाल सोहणी सवेर प्रोग्राम च हुण वेला है जी सोहणे जे गीत दा, ते इस गीत नू इंजॉय करो ते नाल दे नाल अपने जिहड़े तुसीं अपने कम्मां काजां लई तैयारी कर रहे हो वह भी नाल दे नाल करदे रहो। ते उदित नारायण, सुनिधि चौहान ते नेहरा जोशी की आवाज़ च यह जिहड़ा गीत है इनू भी इंजॉय करो ते नाल रिलेट भी करो अपने नाल।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
5: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
3: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा।

0: बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाज

0: और वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक्की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं पंजाबी फिल्म म्यूजिक दा प्रोग्राम महक पंजाब दी। महक पंजाब दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म मिलादी रब्बा यार विछड़े चों। गुरदास मान दी आवाज़ च गीत सुनान जा रहे हैं। लो जी, इंजॉय करो।

प्रोग्राम महक पंजाब दी चल रहे थे। इस प्रोग्राम च आखिरी गीत असि तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म केरी ऑन जट्टा 3 चो आमी विरक ते गिप्पी गरेवाल दा गाया गीत। लो जी, इंजॉय करो।

हुने तुसी सुनी गुलाम अली साहब दी रू नू छू लैन वाली गज़ल। उन्हां दी गायकी हर शेर नू दिल जिहड़ा उन्हां दी गायकी है जिहड़े उन्हां दे शेर ने वह हर दिल नू छू लैंदी है। कुछ रिश्ते कहिंदे ने कि अजिहे हुंदे ने जिन्हां दी नीड़ता ही इंसान

समझौता CETA आज तो लागू हो गया है। इस इतिहासिक समझौते तहत बरतानवी बाजारा च 99% भारतीय बरामदा तो कोई महसूल नहीं लगेगा। कोला अते खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नवी दिल्ली विच महत्वपूर्ण अते रणनीतिक खनिज ब्लॉकां लई नीलामी दे 8वें गेड़ की शुरुआत करनगे। भारत अज तो हैदराबाद विच 12वीं ब्रिक्स किरत अते रोजगार मंत्रियां दी मीटिंग दी मेजबानी करेगा। ईरान वल्लों हाल ही विच हॉर्मूज जलमार्ग विचों लंघन वाले व्यापारक जहाजां ते कीते गए हमलों दे जवाब विच अमरीका ने ईरानी बंदरगाह ते नाकाबंदी मुड़ लागू कर दिती है। राष्ट्रीय महिला कमीशन दे चेयरपर्सन विजय रहाटर अज मोगा अते बल्कि 16 जुलाई नूं बठिंडा दा दौरा करनगे। महिलावां दी सुरक्षा अते विभागां दे आपसी तालमेल नाल संबंधित वख-वख प्रोग्रामां विच शामिल होणगे। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दौरान नशा तस्करां दी 847 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त करके ढा दित्ती है अते सूबे विच 73,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे बागबानी स्वतंत्रता सेनानी अते रक्षा सेवावां भलाई मंत्री मोहिंदर भगत ने कल जलंधर दे बस्ती शेख इलाके विच स्थानक लोकां दीआं मुश्किलां सुणियां अते उहनां दा पहल दे आधार ते हल करवाउण दा भरोसा दिवाया है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे 650वें प्रकाश पुरब लई 80 करोड़ रुपए राखवी रखे। सूबे भर विच 650 गुरु रविदास जी बगीचियां स्थापित कीतियां जाणगियां अते 6.5 लाख बूटे लाए जाणगे। स्पेन फ्रांस नूं 2-0 नाल हरा के फीफा फुटबॉल विश्व कप दे फाइनल च पहुंच गया अते क्रिकेट विच भारत ने बर्मिंघम च पहले एक रोजा अंतरराष्ट्रीय मैच विच इंग्लैंड नूं 6 विकटा नाल हरा दिता है। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਵਸ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10:03 ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 0181-23-4173। ਇਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੀਫ ਅਸਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਏਕ ਥਾ ਟਾਈਗਰ, 2017 'ਚ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।

0: वाह जी वाह, बहुत सोहना गीत, मोहम्मद रफ़ी दी आवाज़, फिल्म इज्जत, जो असी सारे मिलके एंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम च। आओ जानते हैं हूँ अगली फरमाइश किहड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो,
1: जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी।
0: नमस्कार, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने जी?

0: मैं राम जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो बोल रहे
1: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
0: भैन जी, धन्यवाद थोड़ा जी, बहुत वधिया प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी
0: सवेर दे सुन रहे हैं जी अभी आज।
1: चलो जी फिर आज
0: हाँ
1: केड़ा
0: जी
1: गीत
0: हाँ,
1: सुनोगे? हाँ जी
0: गीत भैन जी फागुन फिल्म है जी,
1: ठीक है
0: गीत है जी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया जी।
1: ठीक है जी। आशा भोसले ते मोहम्मद रफी दा गाया।
0: हाँ भैन जी, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी। लो जी आओ सुनते हैं इन्हों की फरमाइश का एक गीत।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम हेलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर के

0: किशोर कुमार दी आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे से जी फिल्म गौतम गोविंदा दा गीत। ते आओ चाहते हैं अगली फरमाइश केड़ी कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।

0: किशोर कुमार दी आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे से जी फिल्म गौतम गोविंदा दा गीत। ते आओ चाहते हैं अगली फरमाइश केड़ी कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो,
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे
1: ओम
0: जी?
1: दत्त बोलदा जी, मैं ऐसे गेट नाभे तो जी।
0: नाभे तो कॉल की है। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे जी?
1: गीत सुना के प्यासा सावन मूवी का गीत है जी, मेघा रे मेघा रे।
0: ठीक है जी, लता मंगेशकर ते
1: बिल्कुल जी,
0: सतीश
1: बिल्कुल,
0: वेदाकर
1: बहुत बहुत
0: दा।
1: धन्यवाद जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। लो जी, फिल्म प्यासा सावन सन 1981 च फिल्म आई सी, ते इस फिल्म दी फरमाइश आई है, ते जरूर पूरी कर दें फरमाइश। लो जी, इंजॉय करो ये गीत।

हाले भी थोड़ा समा बाकी है प्रोग्राम से, तुसी भी शिरकत कर सकते हो, अपने मन पसंदीदा गीत सुन सकते हो। उदे लिए 0181 2342 173 ए नंबर डायल करके प्रोग्राम से शिरकत करो ते अपने मन पसंदीदा गीत सुनो।

0: हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम हलो फरमाइश। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार

0: और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: एसएमई, इनोवेशन, लेबर, एनवायरनमेंट एंड जेंडर।
2: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, टिग्लेनोकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ ही मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी लेके हाजिर तुहाडे सारेयां दी अपनी दीपाली वधवा वलों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार, अदाब ते सत श्री अकाल।

फरमाइशी गीत पर फरमाइशी गीत पंजाबी ही होना चाहिए। सो घूम घुमा के तुम पहुँचया करो, फिर जड़े पहुँच गए ने कंप्यूटर स्क्रीन पर सानू दिख रहे ने साइट पर उन्हों सोहनिया सोहनिया शक्ल जो भी उन्होंने डीपी पर लगाई हुई ने, और बड़ा ही वधिया लग रहा है, दिल बाग बाग हो गया है। सो साडे स्रोतियां का प्यार ढेरों की तादाद पर बरसद और मन जड़ा है वह खुश हो जाता है। फिर धमका पावांगे मिल के, तुसी भी असी भी, तुहाडा ते मेरा सफ़र 11:05 तो शाम 4:30 बजे तक बनिया रहेगा, और तुसी अलग अलग सिलसिलों नाल जुड़े रहोगे, तुहाडा साथ चाहिए। सो उम्मीद करती हाँ यह साथ बनिया रहेगा। तुहाडे मनोरंजनी प्रोग्राम का पहला गीत जैसमीन की आवाज़ च, लो फिर गीत सुन लो।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो और अगला सुनेहा लेके साडे कोल जेड़े स्रोते पहुँच गए ने उन्हें जी चंडीगढ़ सिटी तो पहुँचे ने सतीश अनेजा ते बिमला अनेजा और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया पप्पी ते सोनू भाटिया जमशेदपुर तो हाजिर होए ने और अगला सुनेहा पिन कबूल शाह खुबन जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तन्नू पवी जस्सी सत श्री अकाल भेजी है और हमेशा की तरह लिखिया कि प्रोग्राम इन्हां नूं बहुत वधिया लगता है। साउथ अवेन्यू बोहर तो पहुंचे ने जसपाल भारती वीना भारती सुरिंदर मनदीप डिंपल युवराज हरप्रीत ते शिवाय और आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी सौरव साइना ते निवान शर्मा ये साढ़े अद्धा दे स्रोते ने चाहे देश होन चाहे विदेश च इन्हों का सुनेहा पूरे समय नाल 10 बजे पहुँच ही जाता है। बहुत ही तारीफे काबिल गल है और तुहाडा प्यार जिहड़ा है वह बोलता है जिहड़ा तुसी साडे रूहां नाल जुड़ चुके हो और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर मोता सिंह नगर जलंधर तो मनोज जैन समता जैन बिट्टू राजा मट्टू रानी और इन्हां दे नाल न्यूजीलैंड वाले भी पहुँचे ने अभिषेक जैन मनजिंदर संधु जशनप्रीत और बेबी संधु आशीष खुराना हर्ष तीर और इंडिया जिंदाबाद लिख रहे ने चाहे या न्यूजीलैंड तो लिख रहे ने और राम राम जी कौन कहंदे ने सानू बिल्कुल जी जैन परिवार पहुँच चुका है मुल्लापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन ते गौतम जैन शुक्रिया जी साढ़े वालों भी राम राम जी तुहानू और तुहाडे वालों भेजे सारिया के नाम असी पढ़ ले ने और उम्मीद करते हैं भी इस तरह साडा साथ जिहड़ा बनिया ही रहेगा। पिंड हीरावाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदू पार्वती हिमांशु गोदारा भी पहुंचे ने लो जी अगले सुनेहे दे नाल पहुंचे ने पिंड तेजा मोरी अंबाला तो बंसी लाल संधु पोतरे कबीर ते जसबीर और

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जीत चीमा, मनदीप चीमा, राजदीप, बलराज, राणी डॉली ते सिफत जो सरा। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून। लो जी साढ़े स्रोते मैस गेट नाभा तो भी पहुँचे ने, नाम सोमदत्त नाभा, कैरव नाभा, ज्योति राणी, गुरमन्नत, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सुनेहे दे नाल सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाणा राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान ते प्रतीक चौहान भी पहुँचे ने। पिंड खाने की टाब मलोट तो शमशेर सिंह, कौलतर जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनप्रीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनताज। तुहाडे सारयां दी फरमाइश है अमरिंदर गिल दी आवाज़ गीत सुनन दी, ते लो फिर तुहाडे रेडियो सैट ते इहनां दा गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के लक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0 शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज राज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वस्ते वड़े लैके अर्चना हाजिर
0: ते अर्चना दे नाल तरन भी हाजिर हो गए प्रोग्राम वस्ते वड़े लैके।
1: भई तरन की हाल चाल है?
0: बहुत वधिया, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो?
1: ठीक ठाक। और उम्मीद करदे हां साडे सारियां सवानियां, साडे सारे स्रोते भी राजी होणगे, राजी चंगे होणगे जदों असीं किसे नाल भी मुलाकात करदे हां, मिलदे हां, या किसे नूं टेलीफोन भी करदे हां, या कोई जानकार भी किसे दा मिल जांदा है, असीं अक्सर इही डिस्कशन करदे हां भई की हाल चाल ने, ते तुहाडे पड़ोसियां दा की हाल है, ते तुहाडे फलाने रिश्तेदार दा की हाल है। ते बड़ा चंगा लगदा, शायद इही जिहड़ा सभ्याचार है सानूं ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਰਚਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ,

0: थोड़े जे पैसे बचा ली, कई गुना पैसे जड़े आ भरने पैंदे,
1: और जिहड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है और हरासमेंट होंदी है वो अलग
0: वो अलग,
1: होंदी।
0: ओदा कोई बिल्कुल बिल्कुल।
1: ते वकील साहब, जिवें हुण आपां जलंधर दी गल करिए, ते जलंधर विच अलग अलग चौंक दे विच या अलग अलग एरियाज विच क्या सरकारी पार्किंग बनिया होईयां ने जिथे गड्डी खड़ी करके आपां बाजार या किधरे जा सकीए?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह सरकारी पार्किंग्स बनिया हुई हैं। जिदा
1: जी
0: असी कंपनी बाग चौंक जाने उत्थे म्यूनसिपल कारपोरेशन की पार्किंग है, फिर पेड पार्किंग जो ज्योति चौंक जाइए उत्थे पेड पार्किंग है, मॉडल टाउन जाने उत्थे पेड पार्किंग है, पर असी उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
1: जी
0: नो डाउट ये पार्किंग स्पॉट जड़े ने बहुत घट ने या इन्हों की कपैसिटी घट है,
1: जी
0: पर जे असी हौली हौली हौली हौली इन्हों इनकरेज करा पार्किंग स्पॉट्स होर भी बन सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना। असी पहला अपने च कल्चर डेवलप करिए कि असी अपना व्हीकल जरा प्रॉपर जगह से पार्क करना।
1: जी। ते जिवें तुसीं कहा पार्किंग स्पॉट घट ने, मतलब वो जगह थोड़ी है जिदे विच पार्किंग
0: हाँ
1: बनाई
0: जी
1: हुई है,
0: हाँ जी
1: पर फिर भी वो खाली हुई रहती है।
0: हाँ, क्योंकि
1: जिन्नी
0: हाँ
1: कोई
0: बिल्कुल
1: हैगी है
0: बिल्कुल
1: ओहदे च
0: बिल्कुल
1: भी कोई खड़ा नहीं
0: नहीं
1: करता।
0: खड़ा करता, क्योंकि साडा कल्चर ही नहीं है। असी
1: जी
0: 25-30 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर च लखां दा व्हीकल का नुकसान करवा लेने, वो
1: बिल्कुल।
0: चोरी भी हो जाता, ये बड़ी वड्डी
1: ते
0: समस्या है।
1: जदों साडे देश चो कोई बाहर दे देश होके आंदा है ना, ते आके आसपास सारिया नु जिन्नू जिन्नू मिलेगा ही दसेगा, उत्थे बड़ा सिस्टम अच्छा है। उत्थे सारे कोई पार्किंग सड़क ते मिलदी ही नहीं, उत्थे सारे रूल फॉलो करदे ने। जे तुसी रूल फॉलो नहीं करो ते घर पर्ची आ जांदी है, ते जनाब पर्ची हुण इत्थे भी आनी शुरू हो
0: इत्थे भी
1: गई
0: आनी शुरू हो गई है,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो
1: जी
0: असी दूर की जाना, असी 150 किलोमीटर चंडीगढ़ जाने हैं, उत्थे हर
1: जी
0: बंदा सीट बेल्ट भी लाता है,
1: बिल्कुल
0: स्पीड लिमिट भी कंट्रोल करता है, और जेडे टू व्हीलर के हेलमेट भी पाता है।
1: बिल्कुल,
0: जे उत्थे जाके असी रूल्स ओबे करते हैं तो अपने शहर च क्यों नहीं,
1: क्यों दिक्कत है?
0: जे असी इत्थे भी ये चीज़ करिए तो सारा सिस्टम इको जहा ही चलना सारे देश च, कोई ऐसी समस्या वाली गल नहीं हैगी। पर सानू कल्चर डिवेलप करना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा कि असी रूल्स नू फॉलो करिए।
1: डिफरेंस क्यों है, तुहानू की लगता है? इत्थे जिवें अगर अपने शहर आपां जलंधर दी गल करदे, आस पास सारे शहर लगा लो, लुधियाना है, अमृतसर है, फगवाड़ा है, और किन्ने शहर ने, ते हर एक जनरली जिहड़ा है वो सेम सिस्टम है।
0: सेम
1: सिर्फ
0: सिस्टम है,
1: चंडीगढ़ चले जाओ या कोई प्रॉपर दिल्ली चले जाओ, इहो जिही जगह
0: हाँ
1: ते
0: जी,
1: थोड़ा
0: उत्थे
1: सिस्टम सही।
0: सिर्फ
1: ठीक है
0: ट्रैफिक रूल्स ही चलदी है,
1: ठीक है,
0: ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज जरा ओदी ही चलदी
1: मीन्स
0: है।
1: जिन्हों फड़िया गया वो कहिंदा लो जी गल कर लो,
0: इत्थे
1: है ना,
0: सब तो
1: वो
0: पहला
1: गल नहीं
0: जिद हाँ वो
1: चलेगी।
0: पहला फटाफट फोन ओदे कान नूं लांदा पुलिस अधिकारी दे, जिस करके समस्या ज़्यादा आ रही है।
1: समस्या ज्यादा, हर कोई रूल फॉलो
0: उस
1: करेगा।
0: चीज़ का सब्सटीट्यूट बहुत वधिया लभ्या कि ऑनलाइन जिहड़े चलान ने,
1: जी
0: एक एक्सपैरिमेंट पिछले हफ्ते तो शुरू किया इन्होंने
1: हाँ
0: ऑनलाइन
1: जी
0: ट्रैफिक का। मैं BNC चौंक जो आना कोर्ट वाल नूं, ते हर बंदा मैं देखता फटाफट वो लाइन तो पिछे ही गड्डी खड़ी करता, सीट बेल्ट भी लगी हुई, हेलमेट भी पाया हुंदा है। ऑनलाइन चलान जो घर जाएगा हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उस तो कोई बचा नहीं होना, किसी का
1: बचा
0: फोन नहीं चलना, वो तो
1: नहीं
0: पे ही
1: पाना,
0: करना
1: पे
0: पैना।
1: करना पैना। वैसे की हुंदा सीगा, हुन ते कैमरे दा डर हो गया,
0: हाँ
1: कैमरे
0: जी
1: दा डर पुलिस तो भी ज्यादा वड्डा डर
0: ज़्यादा
1: लग
0: वड्डा
1: रहा,
0: डर है, बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि पुलिस
0: बिल्कुल,
1: वाला अगर खड़ा है ओदा मुंह परले पासे है, पिछों
0: तो
1: दी लौंग
0: बंदा
1: भी
0: निकल
1: खड़ी
0: सकते।
1: हुंदी
0: हाँ
1: है।
0: जी कैमरे तो तुसी नहीं बच सकते, कैमरे ने तुहाडी जेब ते कट लाना है, और ऑनलाइन लाना ही लाना हो
1: हाँ, उन्हें कैमरे दा मुंह दे सारे पासे हैगा,
0: सारे पासे
1: ते
0: है,
1: ओ
0: बिल्कुल
1: है ही नहीं कि तुहाडे वल बैक है ते तुसी निकल जाओ,
0: हाँ
1: ओथे
0: जी हाँ
1: तुसी
0: जी
1: फसना ही फसना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ते ये ते हो गई कैमरे दी गल, जेहड़े हुने थोड़े टाइम पहले इंस्टॉल होए ने,
0: हाँ
1: तुहानू की
0: जी
1: लगता है जिवें दा इत्थे दा एटमोसफेयर है आम शहरां दा, ओहदे विच ए कैमरा वाला सिस्टम जेहड़ा है ओ एप्रोप्रिएट है?
0: हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक के जरा सिस्टम है ये कामयाब हो सकता है, इन्हों स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, जो कैमरे है प्रॉपर वो काम करते रहन, कैमरे थोड़ी जी
1: बिल्कुल
0: उन्हों की मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए तो सब कुछ ठीक हो
1: ओ
0: सकता है।
1: होना चाहिए।
0: हाँ जी
1: ते एक क्वेश्चन मेरा नहीं है, जनता दा है, आम आदमी दा
0: हाँ
1: क्वेश्चन
0: जी
1: है।
0: हाँ जी
1: वो क्वेश्चन है वे कि कैमरे लग गए,
0: हाँ जी
1: सारा उन्हों प्रॉपर विजिलेंस हो रहा है,
0: हाँ
1: कोई
0: जी
1: जरा जे अगे पिछे जाता है उन्हों तुसी वो फाइन लगा देंगे, वो पर्ची घर पहुंच जाती है।
0: हाँ जी
1: ते हर एक वास्ते आम है, चाहे वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी
0: हाँ जी
1: है,
0: कोई भी
1: सारे
0: है
1: वास्ते एक है।
0: हाँ जी
1: सवाल है वे, हर चौंक, हर सड़क
0: हाँ
1: जड़ी
0: जी
1: मेन रोड है
0: हाँ जी हाँ जी
1: देखा जाए, तो जड़ी शहर दी मेन रोड है, जिथे जिथे कैमरे चौंक च लगे ने, एक तो अगला चौंक, अगले तो अगला,
0: हाँ जी
1: वो सारिया सड़कां अद्धिया तो ज़्यादा तोड़ के रखी हुई हैं,
0: हाँ जी बिल्कुल
1: जिथे चार व्हीकल या तीन निकल सकते हैं, उतों एक व्हीकल निकल सकता है। तो और जड़ी सड़क टुटी हुई है, अगर उस सड़क टुटी हुई करके
0: हाँ
1: किसी
0: जी
1: का कोई एक्सीडेंट होता है,
0: हाँ जी हाँ
1: किसी
0: जी
1: को कोई चोट लगती है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: क्या ये कैमरा उन्होंने कोई कंपनसेशन दवाएगा?
0: बिल्कुल जी, वो परस्यू करे उस चीज़ को, कारपोरेशन के खिलाफ केस फाइल करे कि मैं टैक्स पेयर हाँ, मैं गड्डी का भी रोड टैक्स दिता वे, मैं जो
1: जी
0: व्हीकल लिया उदो भी टैक्स दिता है, तो रोड मेंटेन करनी कारपोरेशन की ड्यूटी है, कारपोरेशन के खिलाफ तुसी केस भी फाइल कर सकते हो
1: ते क्या
0: बिल्कुल।
1: आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं होया?
0: एक्सीडेंट वो तो आएगा, लोग विजिलेंट नहीं है, लोग सोचते
1: हाँ
0: हैं कि मैं टेक्निकल हरासमेंट तो बचने लिए मैं अपना ट्रीटमेंट करावा, जो मेरे व्हीकल का नुकसान होया मैं वो ठीक करावा या अपना इलाज करावा, मैं होर हरासमेंट तो बचना चाहता हूँ, इस करके लोग ये काम करते हैं। फिर
1: करेगा
0: अनऑथराइज कब्जे भी सड़कों के उत्ते लोगों ने बहुत
1: जी,
0: किए हुए
1: बिल्कुल
0: हैं, वो असी खुद भी कसूरवार,
1: बिल्कुल
0: एक
1: जी
0: दुकानदार है दुकान के अंदर तो समान रखता, वो बाहर भी कोशिश करता 5-6 फुट मैम जड़ा है अपना समान बाहर लगावा,
1: जी वो पहले 2 फुट होंदा, फिर 4 होंदा, फिर 6
0: फिर
1: होंदा,
0: छे
1: वधदा ही
0: रहा
1: चला जाता है।
0: इस करके।

0: आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: बिल्कुल जी, सावधान रहो ते सुरक्षित रहो।
3: बिल्कुल जरूरी भी है आज के समय दे विच। फटाफट जो मैसेज आ जाता है ना कि थोड़े लिए कुछ आया है तो फटाफट पासवर्ड भरो तो आप भरन लग जाने, ये काम नहीं करने,
2: बिल्कुल नहीं करने। तो जी दस्तावेज जड़े होंगे ने साढ़े खास तौर पर जिवें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड,
3: कोई नंबर शेयर नहीं करना,
2: कोई नंबर किसी ना साझ नहीं पानी। जी अगर जरूरत पैंती भी है या बैंक तो या कि डाकघर तो टैलीफोन आता है तुहानू ते खुद जाके विजिट करो ते जी बनती जानकारी है उन्नी की ही दो जिन्नी की जरूरी है।
3: बिल्कुल, जो एक मैसेज लालच वाला आ जाता ना थोड़े वास्ते कुछ निकलिया जी इतने अपने डॉक्यूमेंट्स नंबर भरो तो असं बिना सोचे भर दें तो बहुत वड्डा खमियासा भुगतते हैं।
2: भी उदे नाल नाल ऑनलाइन शॉपिंग तरन तू ते नहीं
3: बिल्कुल कर दी पर बहुत सोच समझ के।
2: वेरी गुड, ये तो बहुत चंगी गल है ते चंगी आदत भी है भी ऑनलाइन शॉपिंग तो करनी है क्योंकि टाइम भी बचता उदे नाल, पर उदे नाल नाल बहुत जागरूक होके ते सावधान होके आपां नूं ये चीज़ां नाल ऑपरेट या ऑपरेशन दे विच लैके आनियां चाहीदियां ने तां जो साडे नाल कोई इदां दी घटना ना घट जावे जिहदा पछतावा होवे।
3: बिल्कुल, हमेशा हर चीज़ की वरतों करो पर जागरूक होना बहुत जरूरी है।
2: ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰਨ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ
3: ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।

0: हुणे तुसी सुन रहे सी परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। दोपहर का 1 बज रहा है। लो हुण हिंदी च समाचार सुनो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2: This agreement would open up new opportunities.
3: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में

0: नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम।
2: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ये समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मिनीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुनोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुनोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी हरी सिंह गिल ते साथियां दी आवाज च गाए लोक गीत सुनोगे। दूजी सभा विच 4 दियां मुख खबरां तो बाद 4:02 ते प्रोग्राम सुनोगे सदा बहार गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तों प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे 17 जुलाई नूं जलंधर विच होण वाले दौरे दीआं तैयारियां चल रहीआं ने। इस दौरे दौरान जलंधर छौणी रेलवे स्टेशन दा उद्घाटन कीता जाएगा ते नाल ही अमृत भारत स्टेशन योजना तहत देश भर दे 74 होर पुनर विकसित रेलवे स्टेशनां दा वी वर्चुअल माध्यम राहीं उद्घाटन कीता जाएगा। प्रधानमंत्री अमृतसर नूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी नाल जोड़न वाली संत रविदास एक्सप्रैस नूं भी रवाना करेंगे। जलंधर पहुंचने तो पहला श्री मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का भी दौरा करेंगे, जिथे उन्हां वल्लों वख-वख बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों का उद्घाटन करने की भी संभावना है। भारत बरतानिया मुक्त व्यापार समझौता अज तो लागू हो गया। अज इस समझौते तहत तैयार किए गए कपड़ों की पहली बरामद खेप न अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो सफलतापूर्वक रवाना किया गया। यह विशेष व्यापारक खेप एयर इंडिया की सीधी उड़ान राही बर्मिंगम ले रवाना की गई है। इस मौके कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर लुधियाना तो भी अज एक उत्पादों की खेप को रवाना किया गया। भारत सरकार दे सूखम लघु ते दरमियाने उद्यम MSME बारे मंत्रालय तहत चल रहे राष्ट्रीय SC ST हब प्रोजैक्ट तहत अज पटियाला विखे SC ST उद्यमियों लिए जागरूकता प्रोग्राम करवाया गया। MSME लुधियाना के ज्वाइंट डायरैक्टर पंकज कुमार झा ने दसिया कि इस प्रोग्राम का उद्देश अनुसूचित जाति ते अनुसूचित कबायली भाईचारा के उद्यमियों की समर्था च वाधा करना है।
1: आज हम यहाँ पे नेशनल SC ST हब के द्वारा आयोजित BDP प्रोग्राम के अंदर आए थे, जिसके अंदर हमने अपनी मिनिस्ट्री से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी, ताकि जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स हैं वो इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। मेन मोटो है कि जितने भी वांछित वर्ग के हमारे एंटरप्रेनर्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। SC ST हमारे भाई बंधु हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, तो उनके लिए जो हमारी स्कीम्स के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एंटरप्रेनर्स के लिए उनके बारे में जानकारी दी है। इससे उन लोगों को आगे बढ़ने में काफी मदद।
0: इस प्रोग्राम दौरान सूबा सरकारां, केंद्रीय सरकारी उद्यमां, बैंकां, उद्योगिक संस्थावां ते होरनां हिस्सेदारां दे नुमाइंदे वी शामिल होए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कपड़ा सनत विच निवेश लई पंजाब नूं भारत दे सब तों पसंदीदा स्थान वजों करार दिंदिआं कहा कि सूबे विच समुची टैक्सटाइल वैल्यू चेन

फौजी वीरो पेश कर रहे हैं तुहाडे लई प्रोग्राम दा अगला गीत, दिल है कि मानता नहीं। फिल्म चो लिया गया, आवाज़ां दित्तियां ने अनुराधा पौडवाल ते कुमार सानू ने, गीतकार समीर ते संगीतकार नदीम श्रवण।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
3: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत प्रोग्राम फौजी वीरां लई। फौजी वीरो, प्रोग्राम दा अगला नगमा लम्हे फिल्म चो लिया गया। आवाज़ लता मंगेशकर दी, गीतकार आनंद बख्शी ते संगीतकार ने शिव हरी।

0: के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहिदे को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संगे मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकत दारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। जनाब स्वरूप ने भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती मुआहिदे के निफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। एसोचेम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मस्कूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भलाई नीस बेहतरी के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीके अपनाने की जरूरत है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीक़ाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कानून साजों को बामानी बहस व मुबाहिसे और तामीरी तबादला ख्याल के लिए इज्जत मिलती है, न कि ऐवान में रखना अंदाजी के लिए। विधायी गौरव यात्रा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि राजस्थान की जमहूरी मुजाकरात और तौर तरीकों की एक शानदार रिवायत है। इस यात्रा का अहतमाम राजस्थान कानून साज असेंबली के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। असेंबली को जमहूरियत का एक स्कूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अवामी नुमाइंदों की नुक्ताचीनियों को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छे कामकाज की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही वक्त का तकाजा है।
2: लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो, मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेह जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए। समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, वही जनप्रति सफल होगा और वही शासन सफल होगा।
0: भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा

0: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सांणंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय

0: गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला, तिरुपति

0: देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने हरी सिंह गिल ते साथी। लो सुनो इन्हां दी आवाज़ च सब तो पहले प्रोग्राम च शाह दाऊद।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठी है जी श्री मुक्तसर साहब तो बाबू सिंह तिमान बलजिंदर कौर तिमान ते रवनीत ते निशु लिख रहे ने मसीता डब वाली तो दर्शन लोट सरगुण इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लोट ते मलोट तो जगतार गिल परमजीत कौर गिल गैवी गिल अमन गिल ते बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू अविताज सिद्धू जगतार जग्गा ते धौला किंकरा तो इन्हां दे नाल जगतार जग्गा जी ते मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा राज शर्मा मंजू शर्मा आशीष शर्मा बिट्टू जैन दीपक जैन ते पुराणी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन अरुणा जैन अभिषेक जैन गौतम जैन रसगुल जैन ते नगीना जैन ते मंडी अहमदगढ़ तो बिट्टू राजा नरेंद्र शर्मा सविता शर्मा ते पुष्कर शर्मा एनसी जैन डीसी जैन ते राजा जैन इन्हां दे नाल ते गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मिका बलविंदर विरक जय तेग विरक ते मिका विरक फरमाइश इन्हां सारिआं दी आवाज़ है सज्जण अधी।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठी है जी आरायण तो डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला जयपाल सोनू ते ममता जयपाल मोक्ष दिशा सुशांत ते विक्रम जयपाल लिख रहे ने। गुरमीत सिंह मीता लिख रहे ने जी साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो चिट्ठी ते चंडीगढ़ तो है सतीश अनेजा ते बिमला अनेजा ते लिखण वाले ने जी मोहल्ला पै जांदा इन्हां दा फतेहगढ़ लुधियाणा तो ये चिट्ठी है विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीतापुरी ममता मेगा पूजा पुरी ते गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रमा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पाली डीसी ते अरनपुरी ते लिख रहे ने जी सुखा सिद्धू सतेंद्र सिद्धू अभिजीत सिद्धू खुशप्रीत सिद्धू नवनीत ते सारा सिद्धू परिवार पिंड हैगा इन्हां दा कंत वाला हाजर खान जिला फाजिलका तो चिट्ठी है जी। भवनाल हाजीपुर तो लिख रहे ने विजय कौंडल पूजा कौंडल अलीशा ते इन्हां दे नाल आदिया ते

0: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एआई।
1: पेश है हुन तक दियां चौणवियां खबरां।

मिलो या ना मिलो, दुआओं में रहोगे, हर मुस्कुराहट की वजह बनकर रहोगे। ये मोहब्बत किसी शोर की मोहताज नहीं, दिल की हर धड़कन में सदा तुम ही रहोगे। प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत, और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर के अंदर तो सुन रहे हो। प्रोग्राम दा अगला नगमा कुदरत फिल्म चोलिया, आवाज़ किशोर कुमार दी। इस गीत नु लिखिया मजरूह सुल्तानपुरी ने।

कुछ दर्द दवा से नहीं, किसी की मुस्कान से कम हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर तकलीफ को भी खूबसूरत बना जाते हैं। सदाबहार गीता दा अगला नगमा दर्द फिल्म चुलिया, आवाज़ा आशा भोसले ते किशोर कुमार दियाँ, गीतकार ने नक्श लालपुरी ते संगीतकार ने खयाम।

प्रोग्राम चल रहा है सदा बहार गीत और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। प्रोग्राम दा अगला गीत मिली फिल्म चो लिया गया, आवाज़ किशोर कुमार दी, संगीत निर्देशक ने एस डी बर्मन।

तेरी याद का मौसम जब भी चला आता है, दिल का हर कोना खामोशी से महक जाता है। कुछ लोग दूर होकर भी इतने करीब रहते हैं कि हर धड़कन में उनका ही नाम सुनाई देता है। पेश है सदाबहार गीत दा आखरी नगमा, ससुराल फिल्म चुलिया। आवाज़ मोहम्मद रफी दी, इस गीत नु लिखिया हसरत जयपुरी ने।

राम राम बोल बोल खोजते बड़पागी, हर का पंथ को बतावे हौ ताके पाए लागी। खसम प्रभु दी पाल विच बिरहों कुठी आत्मा, परमात्मा दी पाल लई प्रभु दे नाम दे रसिया दे चरण परसदी हुई बेनती करती है कि कोई हर प्रभु दी प्राप्ति दा मार्ग दसे। चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी राग देव गंधारी विच उचारे गए शब्द विच भी एहो जही जिग्यासा लैके बेनती करदे ने। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावा मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मेरो सुंदर कहा हो मिला कित गली, हर के संत बतावा मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द गायन की तासी पाई हरजिंदर सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। प्रभु पति नालों विछोड़ा कष्टदायक हुंदा है, दूरी लम्मेरी पास दी है, इंज महसूस हुंदा है कि पिर परदेस सिधाए। तंजीव रूपी स्त्री सज्जन प्रभु नु मिलाप लई सुनेहे कल दी है। राग तुखारी विच उचारे गए शब्द विच ऐसी अवस्था दा वर्णन है। साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी, सार समाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द गायन कीता है पाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी सार समाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इसे शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी संतोख सिंह।
1: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन भरेंदी मुंद नैन भरेंदी गुण सारेंदी क्यों भरा मिलां प्यारे मार्ग पंथ ना जाणू विखड़ा क्यों पाइए पिर पारे सतगुर शब्दी मिले विशुनी तन मन आगै राखै नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखै। गुरबाणी आशे अनुसार हरेक मनुखी आत्मा उस परमात्मा रूप पति दी जीव स्त्री है। मनुखा जन्म धारण करन वालियां सारियां आत्मावां दा मूल मनोरथ उस परमात्मा विच अभेद होना है जिस तों ओह विछड़ के आईयां हन। अजिही अवस्था दा बयान इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। ये पावन शब्द मनुखता दे रहबर कलयुग दे तारनहार धन धन श्री गुरु नानक देव जी का उचारिया होया है। जेड़ा कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कत्ती रागां विच्चों बाईवें राग तुखारी विच्चों लिया गया है। ये राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1107 अंग तो लैके 1117 अंग तक दर्ज है। अते विचार अधीन शब्द पावन अंग 1111 उपर सुभायमान है। इस संपूर्ण शब्द दे 4 बंद हन जिस विच्चों तीजे बंद दी व्याख्या करन दा यतन करदे हां। इस पावन शब्द की आरंभता विच श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे हन साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी। विदेशी अड़े का अर्थ है परदेश विच रहन वाला। सज्जन प्रभु जी हरेक जीव स्त्री दे हिरदे देश विच वस रहे हन पर नामहीन जीव स्त्री दुखां विच घिर के उसनू परदेश विच वसदा समझदी होई दुखां तो बचन लई तरले भरे सनेहे भेजदी है। सार संभाले तिन सज्जना मुंद नैन भरेंदी नाम तो वांझी अनजान जीव स्त्री सहेड़े दुखां दे कारण विरलाप करदी होई वार वार परमात्मा नूं याद करदी है। इसे तरह की अवस्था का बयान 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1094 उपर मारू राग दी वार अंदर करदे हन। तू चौ सज्जन मेड़िया डेई सिस अवतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। शब्द की अगली पंक्ति विच गुरु जी फरमाउंदे हन मुंद नैन भरेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिलां प्यारे सारेंदी तो भाव है याद करना। नाम तो वांझी होई अनजान जीव स्त्री सुहेड़े दुखां दे कारण विरलाप करदी है प्रभु पति दे गुण चेते करदी है।

0: तरले लेंदी है कि प्यारे प्रभु जी नूं किवें मिलां, मार्ग पंथ ना जाणू विखड़ा, क्यों पाइए पिर पारे। विखड़ा तो भाव है औखा, जिस देश विच ओ प्रभु प्रीतम वसदा है, उस दा रस्ता अनेकां वकारां दियां औकड़ां नाल भरिया होया है। मैं उस रस्ते बारे जानदी भी नहीं हाँ, मैं उस पति नूं किवें मिलां। ओ तां इन्हां वकारां दियां रुकावटां तों पारले पासे रहिंदा है। सतगुर शब्दी मिले विशुनी, तन मन आगै रख है। विशुनी दा अर्थ है विछड़ी हुई। हे भाई, जेड़ी विछड़ी हुई जीव इस्त्री गुरु दे शब्द राहीं अपना तन मन उस दे हवाले कर देंदी है, ओ परमात्मा पति नूं मिल पैंदी है। नानक अमृत बिरख महारस फलिया, मिल प्रीतम रस चख है। शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां राहीं साहिब सच्चे पातशाह फरमान करदे हन कि हे नानक, परमात्मा दा नाम आत्मक जीवन देन वाला एक ऐसा रुख है जिस नूं उच्चे आत्मक गुणा दे फल लगदे हन। गुरु दे शब्द राहीं अपना तन मन भेटा करन वाली जीव इस्त्री प्रभु प्रीतम नूं मिल के रुखां दे फलां दा स्वाद माणदी रहिंदी है। भगत कबीर जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1104 उपर मारू राग अंदर परमात्मा अगे अजेही अरदास करदे हन। कह कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पव जल फेरा।
1: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी संतोख सिंह। राग सोरठ विच उचारे गए शब्द विच साहिब श्री गुरु रामदास जी प्रभु प्रीत गोविंद प्रीत नूं अत प्यारा बयान करदे ने ते स्पष्ट करदे ने कि जदों तो मैं साधु पुरशां दी सच्ची शरण कीती है, मेरे हिरदे विच मुरारी प्रभु दा वासा होया है ते मेरा मन सुकून प्राप्त कर गया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 607 ते फरमान है, गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच

0: 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवार डांगो आपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 होए ने। हुण पेश है प्रोग्रामां दा वेरवा।

हुन तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच कम दियां गल्लां, अज दे पा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नां नाल सिलसिला होएगा मेरी खेती ते किसान उद्यमीकरण ते संचार बारे डॉक्टर हरप्रीत सिंह नाल होई गल्लबात तुसी सुनोगे। सत:40 बजे ते समाचार समीख्या प्रोग्राम पेश करांगे। सत:45 बजे ते पंजाबी वार्ता प्रोग्राम च डॉक्टर सुदर्शन गासो दी वार्ता सुनोगे मां बोली दा महत्व। इस तो फौरन बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। रात 8 बजे पेश करांगे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 8:15 बजे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 ते आधारित रेडियो रिपोर्ट तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र राही। इस तो फौरन बाद भजन सरवण करोगे। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट ते 9:30 बजे चर्चा का विषय है प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा ते 10:02 बजे ते पेश करांगे जी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। रात 11:10 ते प्रोग्राम सौगात पेश करांगे डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र राही। सो इसी जी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दस लाख दी लॉटरी मेरी, वाह।
4: फसी फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
5: RBI कहंदा है,
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन सुनते हैं देश गान।

आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। कहिंदे ने कि चंगे कर्म हमेशा चंगे नतीजे लियांदे ने। दूजियां दी मदद करना ते सच्चाई दी राह ते चलना जीवन नूं खुशहाल बनाउंदा है। सो जनाब, कदी भी सच्चाई दे रस्ते नूं छड्डो ना, हमेशा उस ते चलण दी कोशिश करो।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 2026 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਬ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਧਾਮ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ ਪੁਰੀ ਮੇ ਕਲ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂਵਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਕੋ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਪੂਰਵਾਵਲੋਕਨ।
2: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का

सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक

0: और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हों। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहाँ राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।

0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
1: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको तपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वर्ण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
2: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहन में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्योचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
0: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा

0: के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
1: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
0: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
2: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीतिस एज वी कॉल, एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फैसिलिटेट ए वेरी सेफ, ऑर्डरली एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग रथ यात्रा फॉर द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम फार अक्रॉस द वर्ल्ड। The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabhas of the Sri Mandira, the officials, the volunteers, and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
0: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
3: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 ते आधारित रेडियो रिपोर्ट साढ़े दिल्ली केंद्र राही। हुन सर्वन करते हैं भजन। पहला सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज च भजन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਜਨ ਹਰੀਓਮ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 9।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन

0: के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले

0: डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रूपए से अधिक है।
0: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
0: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को $14 करोड़ मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस

0: फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
3: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही

0: अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एस पी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया,
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि

0: एग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे। और दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है। हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है जो हमारा लक्ष्य है, एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
0: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कॉम्पोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे

0: वेजिटेबल्स जो हैं वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन, और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ थे प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के 0 हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें 0 हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें 0 हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% है 0 हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें 0 हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी 0 हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी 0 हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स केमिकल्स फर्टिलाइजर्स फार्मास्यूटिकल्स ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है जॉब इंटेंसिव है इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त। तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स में और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स करते हैं। एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है बिजनेस की जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नीजर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो

0: मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो PLI है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे FTA करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई FTA साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने FTA शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज UK इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुँचेगा, तो पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की,
1: जी
2: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है। उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो हैं और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत IT और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
0: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% UK है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी IT सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी, उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि FTA आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर FTA की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड

0: दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए. अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूँ कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कंपीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं. जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा. और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो.
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये

0: बात है 23-24 और 33-34 का। मैं समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज़्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहाँ पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफ़ी एक धक्का पहुँचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है, उसमें एक काफ़ी एक धक्का मिला है उसको। और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज़्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है, उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी, और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है, जो 15 से 20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूँ कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा, ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी, वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
0: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज़्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही हैं, और ख़ास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज़्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज़्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज़्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनज़र उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज़्यादा उनको

0: वो जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारे इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज़्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नज़रिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
2: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो ज़रूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीज़ों में, सब चीज़ों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब ज़ीरो में आ चुकी है। नाउ ज़ीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज़्यादातर एमएसएमई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है। उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी जो पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि ज़रूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हर एक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित

0: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
1: ये समझौता जरूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा। हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
0: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य, चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया, थैंक
1: यू, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुन वाले दा स्वागत करते हैं जी। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। प्रोग्राम च अगले गीत की फरमाइश जी साढ़े को पहुंची है जी, सुनना चाहते ने वड़िंग खेड़ा तो मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, डेरा कलोनी तो धर्मा सागर, इंद्रजीत मंगा, अवतार सिंह पन्नू, मथौला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो सानू फरमाइश भेज रहे ने, रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक, JS नायक ते इन्हों का पूरा ही डागला परिवार।

छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा तो राजेश सेन सुरेखा सेन सानू फरमाइश भेजे ने। बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय टिंगिया नमन टिंगिया ते अपार टिंगिया। सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खारवन मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी चंडीगढ़ तो राजू सानू फरमाइश भेज रहे जी। आओ हुण सुनदे ने सारे दी मिली जुली फरमाइश ते किशोर कुमार ते आशा भोंसले की आवाज़ च बंदिश फिल्म का एक गीत।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद

0: और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCDA और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission

0: हेलो।
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सर
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते
1: जी, मैं
0: कित्थे?
1: राजू बोलदा जी, चंडीगढ़ तो।
0: होर सुनाओ राजू जी, की हाल चाल है तुहाडा?
1: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: मौसम किहो जा रिहा अज
1: मौसम
0: चंडीगढ़
1: तां
0: दा जी?
1: गर्म है सर जी, बहुत।
0: हुमस
1: हाँ जी हाँ, 2-3 दिन कहंदे होर रहूगी नहीं।
0: ते फिर खुल के मीह वरेगा,
1: हाँ जी, सावन दा महीना चढ़ जाएगा कल से। हाँ
0: ठीक है जी। ते खीर पूड़े का भी मौसम आ गया है,
1: जी हाँ जी, खीर पूड़े गुलगुले कचौरी।
0: क्योंकि बारिश दे दिनों च तिखियां चीजा छड़ के मीठा खाना चाहिए,
1: हाँ जी
0: तासीर
1: हाँ जी
0: वधिया रहती है, पेट
1: हाँ
0: लई
1: जी हाँ जी
0: सुकून रहता है जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है जी, ते गीत दी फरमाइश दस दियो जी।
1: सविंदर बिटी दा गीत सुनना जी सर।
0: क्या बात है जी, सोने जे सिंगर दा सोना जा गीत सुनावांगे तुहानू रीझ। फोन करने लिए शुक्रिया जी। कुछ सुनेहे भी शामिल करते हैं जी, जिन्हां च पहला सुनेहा जी जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजे डिकैस्ट्रो, पर्ल ते विलिस डिकैस्ट्रो। अगला सुनेहा सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम ते पूरा इन्हां दा परिवार। ये सारे जने हैं जी कुम्हार खेड़ा सहारनपुर तो। अगला सुनेहा वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा।

कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही, ईशिता अरोड़ा, गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नवी दिल्ली तो। गीत सतविंदर बिट्टी की आवाज च, रीच। Boys and girls, come sit on that right, my lips were there.

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: हाँ जी, मैं प्रकट सिंह लोग बंद दमा जिला बरनाला जी,
0: जिला केड़ा जी?
1: जिला बरनाला जी।
0: क्या बात है जी, की करदे हो जी बरनाले च?
1: आप खेतीबाड़ी करते हैं जी, हूँ
0: ते की बिजाई कीता जी?
1: झोना लाया वा जी।
0: झोना?
1: कुछ क मक्की का 4 रुपए जो जो लाने वाला रहिंदा है
0: अच्छा जी।
1: ते वो लावांगे इक दो दिन। रेडियो
0: ते रेडियो दे नाल कदों तो जुड़े हुए हो? हाँ जी।
1: तीजी पीढ़ी दे विच जुड़े हुए हैं जी। पहला मेरा बाबा जी जुड़े हुए सी,
0: अच्छा जी,
1: उस तो बाद मेरा बापू जी जुड़े हुए सी जी,
0: ठीक है जी।
1: उस तो बाद मैं आ गया जी। जितों रेडगा शुरू होया जी, मतलब रेडगा प्रोग्राम चालू हुआ, उस तो इलाके जुड़े हुए हैं।
0: ठीक है जी। ते सिंगर दस दो जेड़े गायक दा तुहानू गीत सुनाइए।
1: कुलदीप मानक का सुना दो जी कोई वधिया जा गीत जी।
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी। इसे तरह अपनी फरमाइश लै
1: थोड़ी
0: के प्रोग्राम से शामिल होंदे रहा करो जी।
1: पेशकारी बहुत वधिया जी।
0: चलो जी, तुहानू पसंद आया है, तुसी वधिया हो, तुहानू पसंद आया।
1: नहीं जी, आपां सारे
0: ते
1: वधिया जी, आपां रल मिल के
0: हाँ जी, ते
1: प्रोग्राम बहुत वधिया पेश करते हो तुसीं,
0: इसे
1: असीं
0: तरह,
1: सुणदे हां जी बहुत
0: हाँ
1: वधिया
0: जी,
1: शौक नाल।
0: इसे तरह अपनी फरमाइश लै के प्रोग्राम च शामिल होंदे रहा करो, क्योंकि तुहाडे वर्गे दोस्त जद तक प्रोग्राम च शामिल नहीं होणगे ते प्रोग्राम दी लड़ी इन्नी सोहनी नहीं बन सकती। फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कुछ सुनेहे भी शामिल कर लैने जी, जिन्हां चों आया जी, कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा ते सीटी दीवाना। महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमन्नत। गीत सुनना चाहते हैं हरजीत हरमन दा, जरूर इन्हां दी फरमाइश पूरी करांगे। ते अगला सुनेहा जी, सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर तो, आदर्श नगर मलोड़ तो, पंजाब तो, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना ते निवान शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, जिस विच है जी मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। गीत दी फरमाइश इन्हां दी भी जरूर पूरी करांगे जी। और अमरिंदर गिल नूं सुनना चाहते हैं, पर इस समय कुलदीप मानक दी आवाज़ च एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: नमस्कार जी। बस
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस्सते हो जी, कौन ते कित्थों जी,
1: मैं जनकराज जी गुरदासपुर तो। सर
0: ते गीत दी फरमाइश भी दसते हो जी।
1: जी गाँव जी जंगला जटदा जिला किसी ना कमाई ना रच की खाना। तो
0: जरूर
1: सर जी ना मैं एक मैं राजू जी ने बधाई देना जिन्हों का अज लकी
0: गीत सुनाने हैं जी तुहानू, तुहाडी फरमाइश दा जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दसते हो जी, कौन थे, कित्थो जी?
1: मैं सुंदर सिंह आवाज पिंड मोहे खालसा पुखी
0: ते गीत दी फरमाइश
1: कलीन मान का सुना दो।
0: कुलदीप मानक दा गीत जरूर सुनावांगे जी। ते रेडियो दे नाल कदों तो जुड़े हुए हो जी?
1: बहुत टाइम हो गया भरा,
0: हाँ जी।
1: बहुत ही टाइम हो गया,
0: ते किहो जिहा लगदा है जदों
1: बहुत ही
0: प्रोग्राम
1: बढ़िया।
0: च कॉल मिल जाती है जी? गीत तुहानू सुनाने हैं कुलदीप मानक जी दा, कोठे ते गलासी।
1: ठीक है जी,
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: सोनी जी,
0: हाँ जी,
1: सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी,
1: देश राज ड्राइवर, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।
0: गीत केड़ा जी,
1: निम्रत खैरा दला दे, तुसी की कर दे हो।
0: क्या बात है।

साहिब ने ताणिया का ताण, आए न जाई थिर सदा, गुर सबदी सच जान। सच्चे शब्द द्वारा ही उस अकाल पुरख दी महिमा दा बोध हुंदा है। शब्द ब्रह्म है, शब्द गुरु है, इसे करके ही गुरुआं दे मुख तों उचारे हुए मधुर बोल अत मिठे लगदे हन। ऐसे बचना नू सरवण करके मानो अंधकार मनफी हुंदा है, ज्ञान रूप चानण प्रगट हुंदा है, ते कट ही अंतर दे विच उस प्रभु दे दिदार हुंदे हन। मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कट कट हर हर डीठा। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: मेरा मन सबद लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कट कट हर हर डीठा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उना दे रागी जत्थे ने। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। गुरु के शब्द का जेकर जाप करना है तब बिल्कुल सहज अवस्था विच विचरदे हुए करना है। ऐसा करन दे नाल तत दी प्राप्ति हुंदी है। मानो मन दे विच प्रभु दे दिदार दी रीज पैदा हुंदी है। सुनदे हां डॉक्टर जसबीर सिंह साबर होरां दी वार्ता। गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे।
1: ए विचारधीन पंक्ति तीसरी पातशाही विच प्रवेश होई नानक जोत श्री गुरु अमरदास जी की उच्चारण कीती हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग 231 उपर राग गौड़ी दे अंतर्गत दर्ज है। अठा पदों वाले इस शब्द विच गुरु साहब जी वल्लों मानव जीवन सुधारन सवारन ते शिंगारन दे लई कई सार्थक पहलू दर्शाए गए हैं। खास तौर पर विचार दीन इस पंक्ति गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे विच प्रथम गुर के शब्द की बरकत की सार्थकता ते समर्था, फिर आत्मक जीवन की सफलता अते इस सफल आत्मक अडोलता का साधन सहज अवस्था। इस सहज अवस्था के युग के अंतर्गत जदों मानव आत्मा प्रभु की सिफत सलाह फोके कर्म कांडा की थां मन बच कर्म नाल करती है तो सुते सिद्ध उसके हिरदे कमल विच प्रभु मेल लई रीझ पैदा हो जाती है। इस सारे प्रकरण नूं समझण समझाउण लई पूरा शब्द सन्मुख रखना जरूरी लगता है तां जो इस शब्द का मुख मंतव ठीक प्रसंग विच उभारिया जा सके। गौड़ी मल्ला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़ै वाद वखाणा है, अंतर तामस आप ना पछाणा है, तां प्रपाए गुरशब्द वखाणा है, गुरसेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजै पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सत

सतगुर सबद उजारो दीपा, बिनसेव अंधकार तेह मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

अकाल पुरख प्रभु दी कीर्ति उसदे गुण गायन करके कीती जांदी है। जेड़े प्राणी गुरु के शब्द नू सहजे ही गायन करदे हन, ओ सहज दी अवस्था विच विचरदे हन, मानो आनंद दी अवस्था उन्हां नू प्राप्त हो जांदी है। सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गहर निवारै सतगुरु दे अपना नाओ। इस शब्द का गायन कीता है भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

सूख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

सागल मनोरथ पूरी आशा, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजास।

0: खेल गुड़ो क्यों हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखान्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजो नी संभव पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगय गैन ब्रह्मान दहन शीतल सुखदातो असंभो उदव्यो पुरख पूरन बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तुह जस बक्ता कल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुर मत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय उदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुटा सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नन खुटा गुर रामदास तन सर्ब में सहज चंदोया तान्यो गुर अर्जुन कल उचरा तेरा जोग रस जाने हो।
2: पै निरपो मान्यो लाख में अलख लखायो अगम गोचर गत गभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान

0: जब लौ नहीं भाग लला हृदय तब लौ परम ते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में डूबते बूढ़ते कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
1: अंत न पावत देव सभय मन इंद्र महाशिव जोग करे हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट ने

0: जग और न यह महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मथ चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताछ्रदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसह संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल भीख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने आओ भयो तह समसर सोई धरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रताख्य हार।
2: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बच है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुले नाम अमृत मुख लिहियो गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
3: देवपुरी मैं गयो आप

0: आसन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो।
1: एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार।

माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते

जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जा दम पया पार जात गोपी ले आया बृंद्रावन में रंग किया। काल में वेद अथर्वण हुआ नाव कुदाई अलहो पया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तुर्क पटानी अमल किया। चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ।

पौड़ी चित्र सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वडमेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दरमंगण भिख ना पाएंदा दरमंगण भिख ना।